0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त इशी मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे, सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार सत श्री अकाल गंगापुर सिटी। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के साथ आज थोड़ा बहुत ठंड का माहौल है। और अभी आपने सुना फिल्म संगीत कार्यक्रम, थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहेंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और लेकर हाजिर हूँ मैं आपका मन पसंद कार्यक्रम हल्लू फरमाइश। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में आप भी शामिल होने के लिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। आप सुन सकते हैं आपकी आवाज के साथ साथ आपके मन पसंद गानों को।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: नमस्ते मैम, नाम क्या है आपका?
4: अंजना शर्मा।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं अंजना जी?
4: गंगापुर सिटी से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: मैम गाने के बोले आराम आता है दीदार से तेरे।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: मैम नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: नाम क्या है आपका?
1: शहनाज।
2: कहाँ से बात कर रहे हो मैम?
1: संजय कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कहना गलत गलत।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गीत सुना, पिक्चर का नाम है हनीमून और गीत के बोल है शादी की है हमने हनीमून चाहिए।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: वेलकम सर।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो नाम क्या है सर आपका?
1: हाँ धीरूभाई ठाकुर,
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? मऊ कला।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मैं माटे का गड्ढा, तू वो गाना है ना?
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो।

0: गुलशन
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: एक कुर्ती सेक्सी लगती है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89

0: हेलो
1: नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर।
2: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: हेलो
2: सर जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: जलता है जी या मेरा भीगी भीगी रातों में।
0: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन।
3: 89.6 पे रेडियो डीएस
4: सुनते रहिए, दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ
4: डिजिटल ऑडियो डीएस इस बात में है 5,000 सुनहरे गाने।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर।
0: जी नाम बताएं आपका।
1: सर मेरा नाम पायल जागा है।
0: पायल जागा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं पायल जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: होपलेस।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग।

0: थाना के मैं पर्चे
1: राजा जी कहाँ से बात कर रहे
2: हैं?
1: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से? हेलो, गाना बताए सर, कौन सा गाना?
2: फूल अंगारा।
1: फूल अंगारा का बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: राम खिलाड़ी और मेरे चाचा गाना सुनना चाहते, तेरी मेरी का जोड़ी और हारून मिर्जा जी।
1: अच्छा बिल्कुल सुना रहे हैं सर।
0: सलेमपुर से, पठानों का सलेमपुर।
1: जी पठानों का सलेमपुर से सुना रहे हैं सर आपको। आपकी फरमाइश का कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तेरी मेरी क्या जोड़ी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।
2: बंसी वाला मोहना और

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: आरबी गुजर।
0: आरबी जी बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर से।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आपका आना यू शर्मा।
0: सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश के बेहतरीन शख्स हूँ।

0: नमस्ते सर।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं।
0: संजू सैनी, नौगांव नयापुरा से।
1: नौगांव नयापुरा से संजू जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: मेरे ख्वाबों में जो आए।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.

0: सर राधे राधे।
1: राधे राधे जी, नाम बताएं आपका।
0: मेरा नाम समता जाधवन है, बर्ड कला से बोल रही हूँ।
1: समता जाधवन जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
0: उसका गाना सुनना है, फिल्म का नाम है संग्राम। गाने के बोल हैं, उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियाँ से पूछो, इन सबको पता है मेरा नाम।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं जाधवन जी आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। पुल किया, धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।

0: हेलो
1: सर नमस्ते
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: शहजाद खान पुरानी निजाम।
0: सर जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: भर दे झोली मेरी या मोहम्मद।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश।

भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो उस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: जी योगेश जांगड़े पे मैं तरह 36।
1: योगेश जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
0: फिल्म है बॉबी गीत के बोल है मैं शायर तो नहीं।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग रेडियो डीएस में। खुल के धन्यवाद।

0: हेलो।
1: जय भवानी।
0: जय भवानी दादा, नाम बताएं।
1: विमल शर्मा, मऊखला, गंगापुर सिटी, राजस्थान।
0: क्या बात है विमल जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
1: अब आपकी आदतों को देख के गाना बजा दीजिए, सजनवा बैरी हो गए हमारे।

0: हेलो
1: जी, नाम बताइए सर।
0: रफीक खान बोल रहा हूँ, लोगो मस्जिद के पीछे से।
1: रफीक जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तुझे याद ना मेरी आई किसी से, आप क्या कहना?
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग।
0: बिल्कुल

0: हेलो
1: एक
0: हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो एड सॉन्ग सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का इस
3: टेलीविजन फॉर्म में।

0: जी नाम बताएं।
1: हेलो।
0: हाँ जी नाम बताएं।
1: कानू।
0: कानू कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कानू कौन कौन से गाने सुन रहे हैं बताएं?
1: लगा लगा लगा माफी आज कर दीजिए।
0: अरे

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: कशिश।
1: कशिश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सोनापुर सिटी।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: हाल जावे दिल्ली रे झूम उठे आगरा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का।

0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएफ से?
1: मैं सर मैं किसी और का हूँ फिलहाल, ये वाला सुनना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।
2: There is an emergency. A patient is very serious. Accident हुआ है, काफी blood loss
3: हुआ है। Doctor Ujjav को heel attended. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा।
2: Sir, there is an emergency case of Meher Garewal. Accident है।
3: क्या नाम है?
2: Meher Garewal.
3: मुझे ले चलो।
2: Come.

0: हेलो
1: हेलो
0: नाम बताएं।
1: नमस्कार भाजपा,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: राजेश कुमार बोल रहे
0: हैं। राजेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना है रात भर रही।

0: आपकी फरमाइश पे जी नाम बताएं।
1: कोमल।
0: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: प्यार की कश्ती में है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर। कहाँ
1: रोहित राव सिंह
0: से बात कर रहे हैं?
1: सिटी
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कष्ट
0: हाँ सर,
1: कष्ट कष्ट
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप।

0: नमस्ते सर
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं आपका?
0: सर रोहित।
1: रोहित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: आदर्श नगर।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: दिल ले गई ले गई।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश कैसे हो?

0: हेलो
1: हेलो जी
0: जी नमस्ते, नाम बताएं।
1: मेरा नाम रेखा है, मैं मिर्जापुर से।
0: रेखा जी मिर्जापुर से। रेखा जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
1: तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं।
0: बिल्कुल सुना रहे रेखा जी आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग रेडियो डीएस में। कॉल किया, धन्यवाद।

0: नाम है आपका?
1: मेरा नाम समता जाधव है।
0: क्या धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
0: हेलो।
2: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
2: नाम दिलराज।
0: दिलराज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: अर्पित मीना।
0: अर्पित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं अर्पित जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बेरी।
0: सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी?
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111, इसके अलावा 9462744762।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:45 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और आप सुन रहे हो मेरे साथ कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 99.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो,
2: नाम बताएं।
1: निकिता।
2: निकिता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रेलवे स्टेशन।
2: बताएं मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तुम ताना तुम।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:53 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो अभी आपने गाना सुना था वो लड़की याद आती है, ये गाने को हमारे को सुना है निकिता जी ने गंगापुर सिटी से, और इसी गाने को सुनने के लिए हमारे पास कॉल किया था रविता शर्मा जी, UDC बाबू मालाखेड़ा गांव से।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: नमस्ते,
0: नाम बताएं।
1: खुशी।
0: खुशी जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: बिजनापुर सिटी से।
0: बताएं खुशी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: सनम तेरी कसम।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं खुशी जी आपको, आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो भैया जी, नमस्ते
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
0: नाम मुस्कान राठौर।
1: मुस्कान जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: हम गंगापुर सिटी से।
1: बताएं मुस्कान जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो से?
0: तू है कहाँ।
1: बिल्कुल सुना रहे आपकी फरमाइश का इस्तेमाल।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते
0: जी। नाम बताएं।
1: कविता देवी बोल रही हूँ।
0: कविता देवी जी कहाँ से बात कर रहे
1: हैं?
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बड़े घर की बेटी नखड़े।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं कविता जी।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: महेंद्र सिंह।
1: महेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो?
0: जन्म जन्म जो साथ में
1: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: सॉन्ग रेडियो। हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर आपका।
1: प्रिंस मीना।
0: प्रिंस जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: साइलेंट लव।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो डीएस।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: मोहित प्रजापत।
0: मोहित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: लंबी लंबी टोली।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: जय इस छोरे गल्ला सेटिंग हो जा।
1: जी साजा, छोरा तो घना एंडी है।
2: न्यू बता, सेटिंग कितनी क्लियर है?
3: सेटिंग का तो बेराना, पर यार इतने हैं तेरा काका तावालिया ने भी ब्याह ले जाएंगे।

0: तेने सारे गांव में मारी बेइज्जती करवा रखी से, अच्छी बनो ब्याह कर लाया।
1: के बात होगी माँ,
2: के बात होगी।
0: वह जींस पैर के पानी लेकर आई से।
1: जींस पैर के पानी लेकर आई है? अरे मैं नट्टा था उसते।
2: अरे सारा गांव न्यू का तांडा से, अकबाऊ नहीं पटाखा लेकर आ रही से।
1: मैं समझाऊ हूँ उसने।
0: समझाऊ नहीं, अच्छी तरह समझा दे।
1: अरे तू जींस पैर का पानी लेकर आई है? फिर रहोगी बोल, जो काम माना पसंद नहीं फिर करेगी तू? चलो मान रहे।
3: देखियो माँ जी, इन दोनों हाथ पकड़ के मेरे चार रेपटे मारे।
0: अरे न्यू थोड़ा कही थी।
1: ए माँ तन्ने तो कही थी, अच्छी तरह समझा दे।
0: ए, चल परे।
2: चल माँ।
1: माँ
3: ठीक करा समार दी तो।

0: उठा के।
1: एक बात बता, तू बार बार नुकवा है मेरे मारे रैप्टे चार। एक बार फ्लैशबैक में जाइए। अरे तू जींस पैर का पानी लेने क्या था गई? माँ नाराज होगी तेरे ते।
2: मेरे सारे सूट धो रखे थे मने, माँ बोली पानी ले आ। के करती
0: के करती?
1: हाँ तू नु करिए, मैं इसका मारूंगा, तू रोन की एक्टिंग करिए, ठीक है? ए फिर जाओगी जींस पैर बावली चल।
3: अरे तना मारे था झूठ बोलने की के जरूरत थी? हमने के बहु बूंदी लागे से।
4: बेटा एक बात बताऊं, सच्ची में बहु पटाखा ले रहा है।
1: चलो अरे भाई गाना बढ़िया लगा हो तो बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल ने
5: सब्सक्राइब कर दो।
1: प्रवेश जी।
6: हां जी सर।
1: कट। अरे भाई पेमेंट किस किस की देनी है?
7: कल कोर्ट में गवाही देना बहुत जरूरी है, बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए मेरे भाई।
8: दो चार बेगुनाह मर गए तो क्या हुआ? तुम्हारे इस भैया जी की वजह से तुम्हारे घर में चूल्हे जल रहे हैं।
9: किसी भी तरीके से वो कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, जो मर्जी हो जैसे मर्जी हो उसे रोकना है।
10: तू चिंता मत कर, कल मैं पहुंचाऊंगा तुझे कोर्ट।
11: नहीं पूछेगा भैया जी।

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: दोस्तों इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के साथ अभी आपने सुना है लू फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों थोड़ी देर में आरंभ होगा आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम नए तराने यानी 1 बजे। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस अकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं वंदना अग्रवाल, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम कृषि और डेयरी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की बड़ी आबादी आज भी कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। कृषि के साथ साथ डेयरी उद्योग भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इन दिनों क्षेत्र की सफलता में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम खेतों, पशुपालन केंद्रों और ग्रामीण परिवारों का अवलोकन करें तो पाएंगे कि महिला कृषि और डेयरी से जुड़े लगभग हर कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाती है। इसके बावजूद लंबे समय तक उनके योगदान को पर्याप्त मान्यता नहीं मिली। आज महिलाओं की भागीदारी केवल श्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि वे किसान, उद्यमी, स्वयं सहायता समूहों की सदस्य, डेयरी प्रबंधक और कृषि नवाचारों की बाहक के रूप में भी उभर रही है। ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि कार्यों में सक्रिय भागीदारी। भारत में कृषि कार्यों का बड़ा हिस्सा महिलाओं द्वारा किया जाता है। वे खेत की तैयारी से लेकर फसल कटाई तक अनेक कार्यों में योगदान देती है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य बीज चयन और संरक्षण, बुवाई एवं रोपाई, निराई गुड़ाई, सिंचाई में सहयोग, खाद एवं जैविक उर्वरकों का निर्माण, फसल कटाई, मड़ाई और भंडारण। कई अध्ययनों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रम का लगभग 60-80% भाग महिलाओं द्वारा किया जाता है। खाद्य सुरक्षा में योगदान महिलाओं का होता है। महिला परिवार के लिए खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे घरेलू बगीचे विकसित करती है, सब्जियां उगाती है तथा अनाज और बीजों का संरक्षण करती है। उनके प्रयासों से परिवारों को पौष्टिक भोजन मिलता है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बनी रहती है, पोषण स्तर में सुधार होता है, भोजन की बर्बादी कम होती है। इस प्रकार महिलाएं देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने में प्रत्यक्ष योगदान देती है। जैविक खेती को बढ़ावा देती है। आज के समय में रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को देखते हुए जैविक खेती का महत्व बढ़ गया है। ग्रामीण महिलाएं परंपरागत ज्ञान के आधार पर जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। वे निम्नलिखित कार्य करती है, गोबर खाद तैयार करती है, बर्मी कंपोस्ट बनाती है, जैविक कीटनाशक तैयार करती है, प्राकृतिक खेती की तकनीकों का उपयोग करती है। इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है और पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है। बीज संरक्षण और परंपरागत ज्ञान भी देती है। महिलाएं पीढ़ियों से बीज संरक्षण का कार्य करती रही है। वे अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन कर उन्हें सुरक्षित रखती है। उनके पास स्थानीय फसलों का ज्ञान होता है, मौसम की समझ होती है, पौधों के रोगों की जानकारी होती है, पारंपरिक कृषि तकनीकों का अनुभव होता है। यह

0: 96 DSFM।
1: बरसों पहले जो मोहब्बत हुई थी उसका दर्द आज भी जिंदा है। तू कहीं भी हो इस दुनिया में, मेरा दिल आज भी तेरा ही इंतजार करता है।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं सीमा जैन, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम इतिहास में महिलाओं का क्या योगदान रहा। नमस्कार श्रोता, आप सुन रहे हैं अपना सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा है, इतिहास में महिलाओं का योगदान। इतिहास केवल राजाओं, योद्धाओं, साम्राज्यों की कहानी नहीं है, इतिहास उन महिलाओं की कहानी है जिन्होंने अपने साहस, त्याग, ज्ञान, नेतृत्व, संघर्ष ने समाज में नई दिशा दी। यदि मानव सभ्यता के विकास अध्ययन करें जो पाएंगे, हर युग में महिलाओं ने परिवार, समाज, शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, कला, साहित्य, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए विस्तार में से हम जानते हैं कि इतिहास में विभिन्न कालखंडों महिलाओं का योगदान रहा है। प्राचीन काल में महिलाओं का योगदान भारत के प्राचीन इतिहास में महिलाओं को सम्मानजनक प्रस्थान प्राप्त। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं ने दर्शन और ज्ञान के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई। गार्गी ने अनेक विद्वानों के साथ शास्त्र में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। मैत्रेयी आध्यात्मिक ज्ञान और वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महान महिलाओं ने सिद्ध किया कि ज्ञान और शिक्षा केवल पुरुषों से सीमित नहीं है। भारतीय संस्कृति और धर्म महिलाओं की भूमिका है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्ति का रूप माना गया है। माता सीता त्याग, धैर्य, आदर्श जीवन के प्रतीक है। द्रौपदी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया। माता अहिल्याबाई होलकर ने प्रशासन और धर्म समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए। उनके शासन काल को आज ही सुशासन का उदाहरण माना जाता है। मध्यकालीन भारत में महिलाओं का योगदान। मध्यकाल में महिलाओं के सामने अनेक सामाजिक चुनौतियां थी, फिर भी कई महिलाओं ने अपनी प्रतिमा और साहस इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासक थी। उन्होंने दिल्ली सनातन शासन संभाला और यह साबित किया कि महिला भी सफल प्रशासन चला सकती है। रानी दुर्गावती वीरता और देशभक्ति मिसाल थी। उन्होंने मुगल सेना बहादुरी को सामना किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए बलिदान दिया। चांद बीवी विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा और उद्भुत साहस का परिचय दिया। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। रानी लक्ष्मीबाई, जब वीरता की बात होती है तो सबसे पहले नाम रानी आता है। सांची की रानी लक्ष्मीबाई 1957 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। उन्हें वीरता आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करती है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया। कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं को समाज सुधार के लिए प्रेरित किया। अरुणा आसफ अली, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने महत्वपूर्ण नेतृत्व किया। स्वतंत्र संग्राम की अग्रणी महिला नेताओं में शामिल रही। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेक महान महिलाओं ने संघर्ष किया। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है। उन्होंने लड़कियों के लिए विद्यालय खोले, समाज शिक्षा की अलग जगाई। उस समय जब लड़कियां शिक्षा का विरोध होता था तब उन्होंने शास्त्रपूर्वक ये कार्य है। उनका योगदान आज भी प्रेरणादायक है। साहित्य और कला में महिलाओं का योगदान। साहित्य और कला के क्षेत्र में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान दिया। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य महान कवित्री थी। उन्होंने रचनाएं संवेदनशीलता मानने में मूल्यों का संदेश दिया। अमृता प्रीतम ने साहित्य के माध्यम से महिलाओं की भावनाओं को संघर्ष का को आवाज दी। संगीत जगत की लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज में विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया। विज्ञान और तकनीकी महिलाओं का योगदान। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी प्रतिमा का परिचय दिया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल पहली महिला थी। उन्होंने लाखों युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा। टेसी थॉमस को भारत की मिसाल वुमन कहा जाता है। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और मिसाइल विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीति में महिलाओं का योगदान। राजनीति में महिलाओं ने नेतृत्व क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इंदिरा गांधी भारत की पहली बार प्रधानमंत्री थी। उन्होंने देश के विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिमा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ाया दिया। खेल जगत में महिलाओं का योगदान। आज भारतीय महिलाएं खेलों में विश्व स्तर पर देश का गौरव बढ़ा रही है। बीपी सिंधु वर्ल्ड विंटर में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धियां हासिल की थी। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। साक्षी मलिक ने ओलंपिक के पदक जीत भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा प्रस्तुत की। समाज सुधार में महिलाओं का योगदान। महिलाओं ने समाज सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, अशिक्षा और लैंगिक भेदभाव से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। आज अनेक महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ता महिलाओं को बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य कर रही है। आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमि। आज महिलाएं सेना, न्यायपालिका, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, प्रशासन, व्यवसाय और अंतरिक्ष अनुसंधान सहित हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वे केवल परिवार की जिम्मेदारियों नहीं निभा रही बल्कि देश के आर्थिक सामाजिक विकास की भागीदारी भी है। आज की महिला आत्मनिर्भर, शिक्षक और जागरूक है। निकर्ष प्रिय श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हर युग में समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे वे शिक्षा, विज्ञान हो या राजनीति हो, साहित्य हो या स्वतंत्रता, महिलाओं का योगदान अमूल्य रहा। आज आवश्यकता है कि हम महिलाओं को सम्मान, अवसर, समान सुरक्षा प्रदान करें ताकि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देती रहे। महिलाओं का सम्मान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि

दोस्तों वक्त हो चुका है 2:01 का समय हो चुका है। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, अब थोड़ी ही देर में सुनोगे भूली बिसरी यादें 89.6 रेडियो DS पर।

0: तो वक्त हो चुका है 3 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: तेरा ही अफसाना, तेरे बिन दुनिया में क्या।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: यहाँ हर बीच

0: चेपियाज में से।
1: छोरी चंदा मैं भी चंदा।
2: 89.6 पे रेडियो दियो।
1: राजस्थानी तड़के में अजानवी गाना रुचि का।

0: हाँ भाई, कौन है यू?
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:37 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: मुझे फकीरा। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
2: शहर का नया मैजिक। रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक।
4: पतली पतली

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली, माफ कीजिए, राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:06 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थान 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111, इसके अलावा 9462744762।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो DS पर।
4: सर नमस्ते।
5: हेलो नमस्कार जी। नमस्कार
4: सर, नाम क्या है आपका?
5: नाम तुलसीराम, ना ग्राम पीलू खेड़ा से।
4: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है तेरा।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो DS में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद मेरे बहन।
4: जी वेलकम।

0: सूरज सैनी।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: चमे चम करती घड़ी में
1: सुना रहे आपकी।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: हम लाटागली से बात कर रहे हैं।
0: नाम क्या है आपका?
1: और हम कौन?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं?
0: हाँ जी।
1: तेरी कुड़मा हूँ क्या दिन आ गए।
0: ओके

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हमारा नाम है लेशा यूजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: साइंस टू।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: तेरे बिना मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी थी, उसका मैं आज आखिरी पन्ना।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रही हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?

0: मोनिका
1: कहाँ से बात कर रही है? मैं कॉलर नहीं करना चाहूंगी।
0: एक उच्च लंबा कद तुझे छोड़ी है तू।
1: सुना रहे फरमाइश करेगी।

0: ओके मैम।
1: हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: पिंकी।
0: कहाँ से बात कर रहे
2: हैं?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: चेहरे पे है तेरे रोशन सवेरा।
0: ओके मैम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अम्मार खान।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? हरियाणा से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: झूठा था तेरा प्यार, झूठे थे वादा।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: कौन सा
2: आपका?
3: लोकेश वर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: बोली से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: दुपट्टे को संभाल सोनी।
1: ओके तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो मैडम?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: होपलेस।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर लाना।

0: नाम क्या है आपका?
1: मेरा गुजर बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: वो है भीकर शंकर जी की बूटी।
0: कौन सा सर?
1: भीकर शंकर जी की बूटी नदिया आंखें खुल गए तो टूटी।
0: सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
0: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: प्रयास कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828 99।
1: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोहम्मद।
2: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगापुर से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तो कितनी खूबसूरत।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी।

0: हर इंसान अपने आप पे काम करना चाहता है, अपने आप को और ज्यादा जानना चाहता है। मैं हूँ आरजे खुशी, और अगर आप भी अपने आप को जानना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा ये देखिए कि जो भी हम खा रहे हैं उसका प्रभाव हमारी मानसिकता पे क्या पड़ रहा है। हमारे शास्त्रों से हमें ये पता चलता है कि जो भी हम खा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारी मानसिकता पे पड़ता ही पड़ता है। अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन से टाइप का खाना है जो आपको सूट कर रहा है और कौन से टाइप का खाना है जो आपको सूट नहीं कर रहा है। कई बार हम लोग ऐसी चीजें खाने लग जाते हैं जो हमारी मानसिकता खराब कर रही होती है, लेकिन क्योंकि हम ध्यान नहीं देते तो हमें पता नहीं चलता। और अगर हमने इस छोटी सी बात पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। लौटूंगी थोड़ी देर में, मैं हूँ आरजे खुशी।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: कहते हैं कि अगर जीवन में ऊपर वाले की सहायता चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सहायता जरूर कीजिए। मैं हूँ आरजे खुशी, और सहायता का मतलब केवल यही नहीं है कि हम किसी की आर्थिक सहायता कर दें या कोई गरीब हमें मिले तो उसकी ही सहायता करें। हमारे आसपास कितने जने हैं जिनको हमारी जरूरत हो सकती है, जैसे बड़े बूढ़े लोग जिनको चलने में दिक्कत है, जिनको बैठने में दिक्कत है, अगर उनकी सहायता भी हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले के और करीब जा रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने आसपास ऐसे मौके ढूंढने लगे जहां हमको सहायता करने का मौका मिले। इसी सोच के साथ अभी यहां से जाती हूं, मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूं आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

देखो देखो देखो सुनो सुनो सुनो, इस वक्त अगर आपको जेल हो जाए तो फिर एक ही जुर्म किया आपने, क्या? पासवर्ड शेयर करना। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और शुगर मनाओगे हिंदुस्तान में हो। ऐसे कौन से कंट्री का मैं क्राइम बताने वाला, अमेरिका यूएस में अगर आप पासवर्ड शेयर करते हो किस चीज का, इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक नहीं, व्हाट्सएप नहीं, नेटफ्लिक्स हाँ, अगर नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करते हो किसी के भी साथ तो आपको जेल हो सकता है। पर शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो, गंगापुर सिटी में हो। क्यों? क्योंकि अमेजिंग बैक टू बैक मैं गाने प्ले करने वाला हूँ आपके लिए 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: हेलो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज इन इंग्लिश. इतनी इंग्लिश नहीं आती मुझे, पर आपने ट्यून इन कर रखा 89.6 रेडियो डीएस. और इंग्लिश फनी लैंग्वेज तो है ही भैया. अमिताभ बच्चन का हमें डायलॉग याद है, टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, वो सब कुछ याद है. पर आज एक नया टर्म मुझे मिला है. मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, निबलिंग्स. अब निबलिंग्स क्या होते हैं? जैसे सिबलिंग्स होते हैं, हम अपने छोटे भाई बहनों को सिबलिंग्स कहते हैं, वैसे ही हमारे जो नेफ्यू नीस यानी कि जो भतीजे या भतीजी होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में निबलिंग्स बोल सकते हैं. पर फिलहाल अब सॉन्ग सुनो 89.6 रेडियो डीएस पे.
1: गंगापुर स्थिति की धरती पर रेडियो डीएस.

0: मुझे कि घर कर
1: अच्छा वाकी हमारा जो नाई है ना वो हिंदुस्तान में नॉर्थ कोरिया में नहीं क्यों क्योंकि 89.6 रेडियो डीएस आपने ट्यून इन कर रखा अमेजिंग गाने तो आपने सुने ही लेकिन आज का शो यही तक था जाने से पहले कोई शायरी नहीं एक अमेजिंग फैक्ट कि हमारा नाई और हम सबको बेशुक्र गुजार होना चाहिए कि हम नॉर्थ कोरिया में पैदा नहीं हुए क्योंकि वहां लड़कों को मेल्स को सिर्फ 28 टाइप्स ऑफ हेयर कट अलाउड है जिसमें से आप सिर्फ एक ही टाइप का बाल हेयर कट करवा सकते हो और औरतों को विमेंस को फीमेल्स को सिर्फ 14 टाइप्स ऑफ हेयर कट अलाउड है यानी इसके बाहर लड़के अगर 29th ट्राई करे और औरतें 15th ट्राई करे तो किम जोंग उन उन्हें सुनते रहो अमेजिंग गाने सिर्फ और सिर्फ 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: संस्कृति की धरतर। रेडियो डियर्स, रेडियो डियर्स, रेडियो डियर्स।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: पसंद
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम, तेरा
1: रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSI अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।